जमत ना त्रास, जमत ना त्रास। गौर अमर गुरु श्री सत, गौर अमर गुरु श्री सत। काल जोग राखी पत, काल जोग राखी पत।

असंख जप असंख पाव असंख पूजा असंख तपता असंख ग्रंथ मुखवेद पाठ असंख जोग मन रहे हे उदास असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दत्ता और असंख सूर मुह पक्षार असंख मून लेवलाय तार।

हर शंख मूर्खंत को हर शंख चोर हराम को हर शंख अमर कर जाहे जोर शंख गड़बड़ हत्या कुमा हे शंख पापी पाप कर जाहे शंख कूड़े यार कूड़े फिराहे असंख कमलेश मल पख खावे असंख निंदक सर कर है पार नाथ नीच कह विचार वार या न जा भाई एक वार जो तुझ पावे साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो असंख कहे सिर पार हुए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन्हें लिखे ते ससर नाहे जे फरमाए

चक्र जाने, चत्र चक्रवर्ती, चत्र चक्र भरती, चत्र चक्र पाले, चत्र चक्र खाले, चत्र चक्र पासे, चत्र चक्र वासे, चत्र चक्र मानिए, चत्र चक्र दानिए, चाचरी शांद न सत्रह न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय जन्म न जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रति सयादि सहदृश कृष भगवती छंद त्वे प्रसाद कहते कि आशिज दिशा देसा है क्या भिज पेशा है क्या गंज कर्म है क्या पंच परम है क्या भिज लोक है क्या आदित शोक है क्या अवधूत भरने के विभूत करने के राजन प्रभा है धर्म तुझा है कि आ शोक भरने के सर्वा भरने के जागत कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनबाहुन रूप है कि आदादेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग महीने के कैदीन है कि रोजी रजाक है

गातमित उदार जलथर अमंड सुसुपन जलथर महंत स्मस्मियन तन भवनास्त्र तरतुर आसा जान बाहुई के सदा ओंकार याद कथनियनाद खल खंड गयाल गुरमर अकार घर घर प्रणाम चित चरण नामन छिजगात अजिज न बात झंझगात नरंजात अन टुट भंडारण ठट अपारा ढीठ धर्मत ढीठ कर्म अणभ्रण अन।

करुणा ले है और काले है खलखंडन है मैं मंडन है जगदीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तन है जाके कर्ण है मन मानिए है जग जानिए है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है।

हैं अमृतामृत हैं, अजवाकृत हैं अमृतामृत हैं, निर्णायक हैं, खलकायक हैं, विश्वमपुर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सुरपायक हैं, पपंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हरता हर हैं, परमात्मे सर्वात्मे आत्म बस हैं, जस की जस हैं, भुजंग पर्यात छंद। नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राजराजे, नमो इंद्रेन्द्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसुताम संसात रूपे, नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने।

कलंकार रूपे अलंकर अलंके नमो आसुआसे नमो बांक बंके भंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रे भंगी त्रे काले अनंगी अकामे एक अछरी शान अजय अलय अपह अभय अपुआ जुआ नास अकास अगंजा पंज लख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथ परमाथ अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात शंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मं विपूते सदा सचदानं सत्रं प्रणासी क्रीमुलकुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विपूते गजायब गनी में हरियं करियं रिच

ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पति अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ फिरे नी सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवा।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतह है पातशाही दसवीं कवि उबाच बेनती चौपाई हमरी करोहा दैर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दोष सबै तुम का बहुआ भाव दै मोहि बचाव सुखी बसै मोरो परिवारा सेव सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैरन का आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई वर्ण

जब युद्ध कर करा करता रा प्रजा तर तब दे अपारा जब अकर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलते तर सब हूँ।

कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए चंपव या जुगा स्वरूप सुयंभव। आवर अच्छा मेरी तुम करो, सिखे उबार सिख्य संगरो, दुष्टि ते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता।

एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दैले हु बारी सर्व ठाउर मोह सहाय दुष्ट दोख ते ले हु बचाई

आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तपाया सहज से ती मन बनिया वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गा बनाइया।

क्या करे विचारिया तुद बाज समर्थ कोई नाही कृपा करमन वारी है सुनो होर थाव नाही।

कृपा करे प्यार या कर कृपा किल वे कट्टे ज्ञान अंजन सारे अंदरों जिनका मोह त्रुटा तिनका सब सच्चा सवार या कह नानक यो आनंद है आनंद गुर ते जाणिया।

कि कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व।

हर बिन यवर न देखो कोई, हर बिन यवर न देखो कोई, नदरी हर निहाले आए विस संसार तुम देख दे। एह रूप यो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया गुर।

राय श्री हर कृष्ण ते आइए। जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवे ताए। साब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब। साब थाई होए सहाए दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ।

0: मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेले लै हो नानक अरदासे प्यो कृपाल साल संग पाया नानक तिपते पूरा पाया रहाओ दूजा राग सूही महला पंजवां कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथिन मोह अगन सुख सागर कर कृपा उदर हर नागर चरण कमल सरनाए नारायण दीना नाथ भगत परायण रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन साध संग जम दूतना भेटन जीवन रूप अनूप दयाला रवन गुणा कटिया जम जाला अमृत नाम रसनित जापै रोग रूप माया ना ब्यापै जप गोबिंद संगी सब तारे पोहत नाही पंच बटवारे मन बच क्रम प्रभ एक त्याय सरफला सोए जन पाए धार अनग्रह अपना प्रभ कीना केवल नाम भगत रस दीना आद मदे अंत प्रभ सोई नानक तिस पिने वरना कोई राग सूही महला पंजवा अष्टपदियां करो नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन ठिया मन रहस्या क्यों पाई है तिन संग जियो संत सज्जन मन मित्र से लायन प्रभ सिव रंग जियो तिन सिव प्रीतना टुटे कभु न होवे भंग जियो पा ब्रह्म पर प्रभ कर दया गुण गावा तेरे नित जियो आय मिलो संत सजना नाम जपे मन मित जियो रहाओ देखै सुने न जाने माया मोहया अंध जियो काची देह बिन सुनी कूड़ कमावै तंद जियो नाम त्यावे से जिन चले गुर पूरे संबंध जियो हुक्मे जुग में आया चलन हुक्म संजोग जियो हुक्मे परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो जिसनो करता विसरै तिसे विछोड़ा सोग जियो आपने पर भाणिया दरगह पैदा जाए जियो ऐथा सुख मुख उजला इको नाम त्याए जियो आ दुर्दिता पह ब्रह्म गुर सेविया सत पाए जियो थां थरंत रव रहया सर्ब जिया प्रत पाल जियो सच खजाना संचिया एक नाम तन माल जियो मन ते कभो ना विसरै जा आपे होए दयाल जियो आवण जाना रह गए मन बुठा निरंकार जियो ता कयंत न पाईऐ ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै सो मर जमै लखवार जियो साच नेह तिन प्रीत मान जिन मन बुठा आप जियो गुण साजी तिन संग बसे आठ पह प्रभ जाप जियो रंग रते परमेसरै बिनसे सगल संताप जियो तू करता तू करण हार तू है एक अनेक जियो तू समरथ तू सर मै तू है बुद्ध विवेक जियो नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो राग सूही महला पंजवां अष्टपदियां कर दसवां एक ओ राग सूही महला पंजवां अष्टपदियां कर दसवां काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जे भुली जे चुकी साई पीत है जी काढ़िया जिन्ना ने हो दूजाने लगा झूरमर हो से वाडिया हो ना छोड़ो कंत पास दास दा रंगीला लाल प्यारा एहो महंजा आसरा रहाओ सज्जन तू है सैन तू मैं तुझो उपर बोह माणिया जा तू अंदर तू ता सुखे तू ने माणी माणिया जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल एहा पाई मुदा तड़ी नित हृदय खसमाल पाव जुलाई पंध तौ नैनी दर्श देखाल सरवणी सुनी कहानियां जो जे गुरथी वै कृपाल किती लख करोड़ प्रिय रोमना पुजन तेरिया तू साही हूँ साहू कह न सका गुण तेरिया सहिया तो असंक मनियो हब बदानिया हिक भोरी नदर निहाल देहे दर्श रंग माणिया जै डिठे मन धीरी है किलविख वन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहया पर पूरे होए निमाणी टहै पेई मिलिया सहज भाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय सूही महला पंजवा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूर घाली होछिया नाम निधान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाओ मोहे बाद अहंकार सर्प रुन्या सुख ना पायन मूल ना विछुन्या मेरी मेरी धार बंधन बंधिया नरक सुरग अवतार माया तंदिया सोदत सोदत सोद तत् विचारिया ना बिना सुख ना है सर पर हारिया आभे जाहे अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते जिन कौ पै दयाल तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोजे कोट असंक बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा तिस हे विसर नाही दा तार अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो राग सूही महला पहला कुचाजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन्यो कुचजी अमावण दोसड़े हों क्यों सोहो रावण जाओ जियो एक दू एक चढ़न दिया कौन जाना मेरा नाओ जियो जिनी सखी सोहर आव्या से अंबी छावड़िए है जियो, से गुण मायु ना आवनी हो कै जी दोस्त रहो जियो, क्या गुण तेरे विथरा हो क्या क्या किना तेरा ना हो जियो, एक तटोलना अंबड़ा हो सद कुर्बाना तेरा जाओ जियो, सुहना रूपा रंगुला मोती तै माणक जियो, से वस्तु सह दितिया मैं तिन सिंह लाया चित जियो, मंदिर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो, हो इन्नी टोली भुलियस ते सकंतना बैठी पास जियो, अंबर कुंजा कुरलिया बग बैठे आए जियो, सात अन चली साहुरा क्या मोह देसी अग्गै जाए जियो, सुती सुती झाल थिया भुली वाटड़ी आस जियो, तैसह नाल हो मुतियस दुखा कु तरियास जियो, तुद गुण मैं सब अवगणा इक नानक की अरदास जियो, सब राती सो हागणी मैं डोहागण काई रात जियो, सूही महला पहला सो चजी जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो, तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा बास जियो, भाणै तख्त बढ़ाइया भाणै भीख उदास जियो, भाणै थल सिर वर सर वह कमल फुलै आकाश जियो, भाणै पवज लंघिया भाणै मंझ प्रयास जियो, भाणै सो सोह रंगला सिफत रता गुणतास जियो, भाणै सोह पिहावला हो आवण जाण मुयास जियो, तू सोह अगम अतोलवा हो कह कह टह पियास जियो, क्या मागो क्या कह सुनी मैं दर्शन भूख प्यास जियो, गुरसाबदी सोह पाया सच नानक की अरदास जियो, सूही महला पंजवा गुणवंती जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो, आखा बिरथा जी की गुर सज्जन देह मिलाए जियो, सोई दस उपदेसड़ा मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो, इहो मन तै कू डे वसा मैं मार्ग देहो बताए जियो, हो आया दूर हो चल कै मैं तकी तो सरण आए जियो, मैं आसा रखी चित मह मेरा सबो दुख गवाए जियो, इतो मार्ग चले भाइड़े गुर कह सुकार कमाए जियो, त्यांगे मन की मतड़ी बेसारे दूजा पाओ जियो, इं पावे हरद सावरा नह लगै तत्ती वाओ जियो, हो आप हो बोलना जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो, हर भगत खजाना बख्सिया गुर नानक की अपसाओ जियो, मैं पोहड़ना तृष्णा पुखड़ी हों रजा तिरुत अघाए जियो, जो गुर दिसै सिखड़ा तिस निव निव लागा तिस निव निव लागौ पाए जियो, राग सूही छंत महला पहला कर पहला एक ओहंकार सतगुर प्रसाद, पर जोबन मैं मत पैयड़ै कर पाहुनी बलराम जियो, मैली अवगण चित बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जियो, गुणसार न जानी परम भुलानी जोबन बाद गवाया, वार कर दर दर्शन नहीं जाता पिरका सहज न पाया, सतगुर पूछना मार्ग चाली सुती रहन विहानी, नानक बालतन रा डेपा बिन पिर तन कुमलानी, बाबा मैं वरदेह मैं हर वर पावै तिसकी बलराम जियो, रव रहया जुग चा तिर पवन बाणी जिसकी बलराम जियो, ते पवन कंदर वै सोहा गण अग अवगणवंती दूरे जासी आसा तैसी मनसा पूर रहया पर पूरे, हर की नार सो सर्व सोहा गण राना मैं नावे से नानक मैं वर साचा पावै जुग जुग पीतम तासे, बाबा लगन गणाए हम पी वनिया साहो रह बलराम जियो, साह हुक्म न जाए हुक्म न जाए सोना टल्ला जो प्रभु करै बलराम जियो, किरत पया करतै कर पाया मेट न सकै कोई, जाई नाव नरहे नेह केवल रब रहया तेहो लोई, माए निरासी रोए वे छुनी बाली बाला हे ते, नानक शब्द नानक नानक साच शब्द सुख मेली गुरचरणी प्रभ चेते, बा बुलो दित्री दूर न आवै कर पैया बलराम जियो, रहसी वेख हर दूर पिर रावी कर सोही है बलराम जियो, साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी प्रधाने, संजोगी मेला थान सोहेला गुणवंती गुर ज्ञाने, सत संतोख सदा सच पल्लै सच बोलै पिर पाए, नानक विछड़ ना दुख पाए गुरमत अंक समाए, राग सूही महला पहला छंत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम कर साजने आए साचा मेल मिलाए सहज मिलाए, हर मन पाए पंच मिले सुख पाया, साई वस्तु प्राप्त हुई जिस सेती मन लाया, अंदन मेल पया मन मान्या कर मंदर सोहाए, पंच शब्द तुन अनहद वाजे तुम तुन अनहद वाजे हम कर साजने आए, आवहो मीत प्यारे मंगल गावहो नारे सच मंगल गावहो ता प्रभावहो सोहरा जुग चारे, अपने कर आया थान सोहाया कार्य शब्द सवारे, ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रे पवन रूप देखाया, सखी मिलहो रस मंगल गावहो हम कर साजने आया, मन तन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम विवरतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरा परम तत्व विचारो जंत पेक तू सफल दाता सिर से दे बनहारो तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारुण की ना सुनो सखी मन मोहन मोहया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुझ बिन कौन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बेकाल पहे देवाने मन राख्या गुर ठाए नानक अवगुण शब्द जलाए गुण संगम प्रभु पाए राग सूही महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आहो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम करे अपनना खड़ी तक्का मैं मंचाओ कनेरा राम मंचाओ कनेरा सुन पर मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पई नहीं केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए नानक साजन को भल जाइए साच मिले करे आए करे आयड़े साजना ता तन खरी सर सी राम हरे मोहड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सर सी जा रावी रंग रातै अवगण मार गुणी कर छाया पूरा पुरख बिधाता तस्कर मार बसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे भर पायड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम पेरे रावेड़ी शब्द रली रव रहे अनह दूरी राम प्रभ दूना होई कट कट सोई दिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस्ती बड़ियाई अमर अडोल अमोल अपारा गुर पूरा सच पाइया नानक आपे जोग सजोगी नदर करे लिवलाइया फिर उचड़िया मारड़िया तिहु लोआ सिरता जा राम हौ बिसम पेख देख गुणा अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निसानो नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवानो पाते मत पूरी पूरा परवाना ना आवै ना जासी नानक गुरमुख आप पछाण है प्रभ जासे अविनासी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही छंत महला पहला कर चौथा जिन किया तिन देखिया जग तंदड़ा लाया दान तेरा कट चांदना तन चंदो दीपाया चंदो दीपाया दान हर का दुख अंधेरा उठ गया गुण जंग लाड़े नाल सो है परक मुहनिया लिया विवाहो हुआ सो बसीती पंच सब्धी आया जिन किया तिन देखिया जग तंदड़ा लाया हों बलिहारी साजना मीता अवरीता इहो तन जिन स्यों गाड़िया मन लियड़ा दीता दिया ता दिया मान जिन स्यों सज्जन जिन स्यों दिया ता दिया मान जिन स्यों से सज्जन क्यों विसरहे जिन दिस आया होहे रलिया जी सेती गह रहे है सगल गुण अवगुण न कोई होहे नीता नीता हों बलिहारी साजना मीता अवरीता हूँ गुणा कह होवै वासला कड वास ली जै जे गुण होवन साजना मिल साज क्रीजै गुण है केड़ी छोड़ अवगण चलिया पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिया जिथै जाए बहिया भलिया कहिया जिथै जाए बहिया भला कहिया झोल अमृत पीजै गुणा का होवै वासला कड वास लीजै आप करे किसी आख्य होर करे ना कोई आखण ताको जाइया जे भूलड़ा होई जे होए भूला जाए कहिया आप करता क्यों भुलै सुने देखे बाज कहे दान अणमंग्या देवै दान दे दाता जग बेदाता नानका सच सोई आप करे किसी आख्य होर करे न कोई सूही महला पहला मेरा मन राता गुण रवै मन भावै सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवै साच पावै साच की मत क्यों टलै इस नान दान सुग्ञान मजन आप अछल्यों क्यों छलै पर पंच मोह बेकार था के कूड़ कपट न दोई मेरा मन राता गुण रवै मन भावै सोई साहेब सो सालाहिया जिन कारुण किया मैल लागी मन मैलिया किने अमृत पिया मथ अमृत पिया एहो मन दिया गुर पह मोल कराया आपनना प्रभ सहज प्रशाता जा मन साचा लाया तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिलै होए पराया साहिब सो सालाहिया जिन जगत ओ पाया आए गया की ना आया क्यों आवै जाता प्रीतम सिव मन मानिया से तीराता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट हो उसारिया पंच पू नायको आप सिरिंदा जिन सच का पिंड उसवारिया हम अवगण यारे तू सुन प्यारे तुत पावै सच सोई आवन जाना ना थिया साची मत होई अंजन तासा अंजिया जासा पिर पावै समझै सूझै जानिया जे आप जानावै आप जानावै मार्ग पावै आपे मनुआ लेवे कर्म सो कर्म कराए आपे कीमत कौन अपे वे तंत मंत पाखण न जाना राम हृदय मन मान्या ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਤਿਸੈ ਤੇ ਸੂਜੈ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਸਾਜਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਪਰ ਕਰ ਜਾਹੀ ਸਾਜਨ ਰਾਤੇ ਸੱਚ ਕੇ ਸੰਘੇ ਮਨਮਾਹੀ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਾਜਨ ਕਰੇ ਲਲੀਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭਾਇਆ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ ਨਾਮ ਸਾਚਾ ਪਾਇਆ ਆਪ ਸਾਜੇ ਥਾਪ ਵੇਖੈ ਤੇ ਸਹਿ ਭਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਲੜੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਆ ਕਿਉਂ ਪਾਦੁਰ ਜਾਣੈ ਆਪ ਮੁਸੈ ਮਤ ਹੁਛਿਆ ਕਿਉਂ ਰਾਹੋ ਪਛਾਣੈ ਕਿਉਂ ਰਾਹੇ ਜਾਵੈ ਮਹਿਲ ਪਾਵੈ ਅੰਧ ਕੀ ਮਤ ਅੰਧਲੀ ਵਿਣ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਕੱਛ ਨਾ ਸੂਜੈ ਅੰਧ ਬੂਢੋ ਧੰਦਲੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਾਨਣ ਚਾਹ ਉਪਜੈ ਸਬਦ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਵਸੈ ਕਰ ਜੋੜ ਗੁਰ ਪਹਿ ਕਰ ਬੇਨੰਤੀ ਰਾਹੋ ਪਾਦੁਰ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਮਨ ਪਰ ਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ ਕਿਸ ਪਹਿ ਖੁੱਲੋ ਗੰਠੜੀ ਦੁਖੀ ਪਰੇ ਆਇਆ ਦੁਖੀ ਪਰੇ ਆਇਆ ਜਗਤ ਸਵਾਇਆ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਬਿਧ ਮੇਰੀਆ ਆਵਣੇ ਜਾਵਣੇ ਖਰੇ ਡਰਾਵਣੇ ਤੋਰਨਾ ਆਵੈ ਫੇਰੀਆ ਨਾ ਵੇ ਹੁਣੇ ਊਣੇ ਝੂਣੇ ਨਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ ਗੁਰ ਮਹਿਲੀ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਭਰ ਪੀਣਾ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀਣਾ ਸਬਦੇ ਭਤੀਜਾ ਅੰਕ ਭੀਜੈ ਸੋ ਮਹਿਲ ਮਹਿਲਾ ਅੰਤਰੇ ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਅੰਤ ਨਿਰੰਤਰੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਬਾਜੰਤ ਅਨਹਦ ਬੀਣਾ ਗੁਰ ਮਹਿਲੀ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਭਰ ਪੁਰ ਲੀਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਾ ਲਾਹੀਐ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਸੋ ਪਾਵੈ ਆਪ ਜਾਣ ਆਵੈ ਆਪ ਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰੇ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਮੁੱਲੇ ਹੀਣੋ ਨੀਚ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੋ ਸੱਚ ਨਾ ਛੋਡ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਦੇਵੈ ਮਤ ਸਾਈ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੁਹਰਾ ਹਰ ਧਿਆਵਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ ਪਾਵਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਟੋ ਜਿਨ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਜਾਪਹੋ ਸੁਖ ਫਲ ਹਰ ਜਨ ਪਾਵਹੋ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ ਸੁਖ ਸੁਹਰਾ ਹਰ ਧਿਆਵਹੋ ਸੁਣ ਹਰ ਗੁਣ ਪੀਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜਿਨ ਕਉ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਾਉ ਭਾਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜੀ ਖੋਈ ਸੋ ਜਨ ਹਲ ਲਾਗਾ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿੰਨ ਅੰਦਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੁਣ ਮਨ ਪੀਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪੁਜੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭ ਗਵਾਏ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭ ਨਾ ਕਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸਾਜਨ ਆਏ ਉੱਠੇ ਕਰਮਾਹੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਹੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ ਦਹਿ ਦਸ ਪੂਜ ਹੋਵੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਪੇ ਜੋਰ ਵਿਛੋੜੇ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਸਾਜਨ ਆਏ ਉੱਠੇ ਕਰ ਮਾਹੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਜੀਉ ਰਾਖੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਸੋ ਭਗਤ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਹੋਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਰਾਮ ਹੋਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਸੱਚੀ ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਮਨ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਸਾਚੈ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚੋ ਕਮਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤਾ ਕੀ ਜਾਤ ਪਤ ਹੈ ਪਤ ਹੈ ਭਗਤ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ਹਰ ਭਗਤ ਕਰਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਵੇ ਜਿਨ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਪਛਾਣੇ ਰਾਮ ਗੁਰ ਔਗਣ ਪਛਾਣੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ ਪੈ ਭਗਤ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ਅੰਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਰਹੀ ਮਹਿ ਬੈਰਾਗੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰਜੀਓ ਵੇਖੇ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਭਗਤ ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਸਾਚੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਮਨ ਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰਹੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਹੋਮੈ ਮਾਇਆ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ ਮਰ ਜਨਮੇ ਦੁੱਖ ਹੋਈ ਰਾਮ ਮਰ ਜਨਮੇ ਦੁੱਖ ਹੋਈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਪਰ ਵਿਗੋਈ ਵਿਣ ਗੁਰ ਤਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਭਗਤ ਵਿਹੂਣਾ ਸਭ ਜਗ ਭਰਮੇ ਅੰਤ ਗਇਆ ਪਛਤਾਨਿਆ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੈ ਪਛਾਣਿਆ ਹਰ ਨਾਮਾ ਸੱਚ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਤ ਖੋਈ ਭਗਤਾਂ ਕਹਿ ਕਰ ਕਾਰਜ ਸਾਚਾ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪੇ ਦੀਆ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਸਮਾਣੇ ਹਰ ਮਨ ਭਾਣੇ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਅਖੁੱਟ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੈ ਹਰਦੀਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਆ ਹਰ ਜਨ ਉੱਚੇ ਸਦ ਹੀ ਉੱਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਪਾਇਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸੱਚ ਸੁਹਿਲਾ ਜਿੱਥੈ ਸੱਚੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਰਾਮ ਹੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੇ, ਸਾਚ ਰੱਖਿਓ ਉਰਧਾਰੇ ਰਾਮ, ਸੱਚ ਰੱਖਿਓ ਉਰਧਾਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਫਿਰ ਭਵਜਲ ਧਰਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਸੋਈ, ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ, ਸੱਚ ਵੇਖੈ ਸਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਸੱਚ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਈ, ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਪਤਰਾਖੈ ਸੱਚ ਸੋਈ ਰਾਮ, ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਾਮਸਕ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਮਰੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਗਰਮ ਨਾ ਜੂਨੀ ਵਾਸਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਸੱਚ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚੇ ਹੋਇੰਦਨ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਨਾ ਵਿਛੜ ਦੁੱਖ ਪਾਇਨ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਤਿਤ ਕਰ ਸੋਹਿਲਾ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਤਨ ਮਨ ਸਾਚਾ ਵਿੱਚ ਸਾਚਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਰਾਮ, ਸਭ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸੱਚੋ ਬੋਲੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ, ਜਹ ਦੇਖ ਤਹਿ ਸੱਚ ਪਸਰਿਆ ਅਵ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਸੱਚੇ ਉਪਜੈ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ, ਮਰ ਜਨ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਵੈ ਸੋਈ, ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ, ਘਟ ਅੰਤਰੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਾਚੋ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਰਾਮ, ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਸਾਚੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੋਭਾ ਸਾਚੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਸਾਚ ਰੱਤੇ ਭਗਤ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਧਨ ਜੇ ਪਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਹਾਗ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇਰਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵ ਨਾ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ ਤਨ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਵਾ ਹੋਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੈ ਰਾਵੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਤਨ ਬਾਲੜੀਏ ਹਰ ਵਰ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਰਾਮ, ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹਾਗਣੀ ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੈ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਸਬਦ ਸਮਾਵੈ ਅੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪਣਾ ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਰਵ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰੇ ਧਨ ਬਾਲੜੀਏ ਹਰ ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਰਾਮ, ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤੀ ਹੈ ਕਾਮਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਭ ਥਾਈ ਸੱਚਾ ਸਿਗਾਰ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਾਮਣ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਹਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਬਦ ਪਛਾਤਾ ਕਾਮਣ ਲਿਆ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਪਾਏ, ਸਾ ਤਨ ਬਾਲੀ ਤੁਰ ਮੇਲੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਈ ਰਾਮ, ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਥਾਈ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਥਾਈ ਮਨ ਵਸਾਈ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਸੱਚ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਮਣ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਮੈਂ ਮਲ ਖੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਈ ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਨਵੈ ਨਿਧ ਪਾਈ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖੇ ਪਾਏ ਰਾਮ, ਅੰਦਿਨੋ ਸ਼ਬਦ ਰਹੋ ਅਨਹ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ, ਅਨਹ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਹਰ ਜੀਓ ਕਰੇ ਆਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਨਾਰੀ, ਅੰਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਗੁਰ ਆਗੈ ਸਾ ਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਕਟ ਅੰਤਰ ਸੇਜਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਰ ਸਦਹੀ ਸੋਹਿਲਾ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਏ, ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਰਾਮ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ, ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਹਰ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸਹੀ ਜਨ ਨਿਸਤਰੇ ਘਟ ਘਟ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ ਸਭ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਿਨ ਕੇਰਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਮੇਲ ਪਇਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਏ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਏ ਰਾਮ, ਹਰੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ ਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਮਨੁਆ ਰਤਾ ਹਰਨਾਲੇ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ, ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਰ ਸਤਹੀ ਸੁਹਲਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗ ਭਰਮ ਪੁਲਾਇਆ ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤਿਨਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ, ਤਿਨਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਆ ਜਰ ਮਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਗਾਵੇ ਰੰਗਰਾਤੇ, ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਹੀ ਜਾਤੇ, ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਕਹੇ ਦਰ ਜਾਪੇ ਕਰ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵਰ ਬਾਲੜੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਹੇ ਰਾਮ, ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹਾਗਣੀ ਹਰ ਜੀ ਉਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ, ਹਰ ਜੀ ਉਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਬ ਸੁਭਾਏ ਸਾਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ, ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਿਗਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਜਿਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, तिर पायड़ा बालड़िए अंदन सहजे माती राम। गुरमती मन अंध भया तित तन मैल ना राती राम। तित तन मैल ना राती है प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मिलाए। अंदन रावे है प्रभ अपना विच हों आप गवाए। गुरमत पाया सहज मिलाया अपने प्रीतम राती। नानक नाम मिला बड़ियाए प्रभ रावे रंग राती। फिर रावे रंग रातड़िए फिर का महल तिन पाया राम। सो सोहत निमल जाता जिन विचों आप गवाया राम। विचों मोह चुकाया जा हर पाया हर कामण मन कामण हर कामण मन पाणी। अंदन गुण गावै नित साचे कथे अकत कहानी। जुग चारे साचा एक वरतै बिन गुर किनै न पाया। नानक रंग रवै रंग राती जिन हसीती चित लाया। कामण मन सोहिलड़ा साजन मिले प्यारे राम। गुरमति मन निर्मल होआ हर राख्या उर तारे राम। हर राखे उर तारे अपना कारज सवारे गुरमति हर जाता। प्रीतम मोहे लिया मन मेरा पाया कर्म विधाता। सतगुर सेव सदा सुख पाया हर वस्या मन मुरारे। नानक मेल लई गुर अपने गुर के शब्द सवारे। सूही महला तीजा सोहिलड़ा हर राम नाम गुर शब्दि विचारे राम। हर मन तनो गुरमुख पीजै राम नाम प्यारे राम। राम नाम प्यारे सब कुल उधारे राम नाम मुख बाणी। आवण जान रहे सुख पाया कर अनंद सुरत समाणी। हर हर एक उपाया है प्रभ नानक कृपा धारे। सोहिलड़ा हर राम नाम गुर शब्दि विचारे। हम नीवी प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुभाए राम। मेलो शब्द सुभाए आप गवाए रंग सवर लिया माणे। सेज सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाणे। नानक सुहागण सावड़ भागी जे चलै सतगुर पाए। हम नीवी प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम। कट कट्टे सबना विच एको एको राम पधारो राम। इकना प्रभ दूर वसै इकना मन आधारो राम। इकना मन आधारो से जनहारो वडभागी गुर पाया। कट कट है प्रभ एको स्वामी गुरमुख लखाया। सहजे आनंद हुआ मन मान्या नानक ब्रह्म विचारो। कट कट्टे सबना विच एको एको राम पधारो राम। गुर सेवन सतगुर दाता हर हर राम समाया राम। हर धूड़ देव हो मैं पूरे गुर की हम पापी मुक्त कराया राम। पापी मुत कराय अब गवाए निज कर पाया वासा। विवेक बुद्धि सुख रैन वेहानी गुरमत ना प्रगासा। हर हर आनंद भया दिन राति नानक हर मीठ गाए। गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम समाए। राग सूही महला चौथा छंत कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख में लाए। अवगण विकणा गुण रवा बलराम जियो। हर हर नाम ते आए गुरबाणी नित नित चवा बलराम जियो। गुरबाणी सत मीठी लागी पाप विकार गवाया। हो मैं रोग गया पौ भागा सहज सहज मिलाया। काया सहज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत कर भोगो। अंदन सुख मन ने तर लिया नानक तुर संजोगो। सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो। संत जना कर मेल गुरबाणी गावाइया बलराम जियो। बाणी गुरगाई परम गत पाई पंच मिले सो हाया। गया क्रोध ममता तन नाठी पा खंड परम गवाया। हो मैं पीर गए सुख पाया रोगत पे शरीरा। प्रसादी ब्रह्म प्रसाता नानक गुणी गहीरा। मनमुख बिछड़ी दूर महल न पाए मनमुख बिछड़ी दूर महल न पाए। बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ वे हजे। कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावै महा दुख पावै। बिन सतगुर मग न पाया उजड़ पंथ प्रमै गावारी। खिन खिन तके खाया पे दया करे प्रभदाता सतगुर पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले नानक सहज सुभाए। आया लगन गणाए हृदय तन ओ महिया बलराम जियो। पंडित पादे आन पति बह वाचाइया बलराम जियो। पति वाचाई मन भजी वधाई जब साजन सुने करे आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरख अगम अगुचर सद सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा कर कै मेले विछड़ कदे न जाई। सूही महला चौथा हर पहलुड़ी लाभ परवृत्ति कर्म दृढ़ आया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ हो हर नाम ते आवहो सिमृत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराध हो सबके लिख पाप गवाया। सहज आनंद हुआ वडभागी मन हर मीठा लाया। जन कह नानक लाभ पहलिया रंभ काज रचाया। हर दूजड़ी लाभ सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो। निरपौ पै मन होए हुमै मैल गवाया बलराम जियो। निर्मल भौ पाया हर गुण गाया हर वेख्या राम हर दूरे। हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रहया पर पूरे। अंतर बाहर है प्रभ मेल एको मेल हर जन मंगल गाए। जन नानक दूजी लाभ चलाई अनहल शब्द बजाए। हर तीजड़ी ला मन चाव पया बैरागिया बलराम जियो समझन हर मेलो हर पाया बड़बागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुखे बोली हर बाणी संजना बड़पागी पाया हर कथिया कथ कहानी हृदय हर हर हर धुनि उपजी हर जपिय मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो हर चौथड़ी ला मन सहज पया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन धन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे पर पाया अंधन हर लिव लाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम भजी भदाई हर पर ठाकुर का जो रचाया तन हृदय नाम विगासी जन नानक बोले चौथी लावै हर पाया प्रभ अविनासी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही छंत महला चौथा कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए हर रसन रसाए मेरे हर पाए मेरे प्रभु पाए मिलिया सह सुपाए अंदन भोग पोगे सुख सोवै शब्द रह लिवलाए वड्डा भाग गुर पूरा पाइए अंदर नाम ते आए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए संगत संत मिलाए हर सा निर्मल नाए निर्मल जल नाय मैल गवाए पहे पवित श्रीरा दुर्मत मैल गई परम पागा हूँ मैं बिनथी पीरा नद प्रभु सत संगत पाई निज कर होआ वासा हर मंगल रस रसन रसाए नानक नाम प्रगासा अंतर रतन बिचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे ज्ञान अधेर गवाया ज्ञान पर ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानण कर मंदिर सोहाया तन मन अर्प सी गार बनाए हर प्रभ साचे पाया जो प्रभ कह सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभ का जो रचाया गुरमुख वियाहण आया वियाहण आया गुरमुख हर पाया सा तन कंत प्यारी संजना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी स्वर नर गण गंधर्प मिल आए अपूर्व जंय बनाई नानक प्रभ पाया मैं साचा ना कदे मरै ना जाई राग सूही छंत महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आप हो संत जन हो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कनेरे राम शब्द कनेरे हर तेरे तू करता सब थाई एहने से जपी सादा सालाही साज शब्द लिवलाई अंदन सहज रह रंग राता राम नाम हृदय पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अब न जाने दूजा सब मह रब रहा सो प्रभ अंतर जामी राम गुरशब्द रवै रब रहा सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच गुरमत सच पाइय सहज समाइय तिस्पिन अव न कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे ले मिलाए नानक सो प्रभ सब दे जा पाए एहने स नाम त्याए इहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम अंतरे हो मैं ममता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई थाए न पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावै चोटा खावै अंत गया पछताया बिन नावै को बेली नाही पुत कुटुंब सुत पाई नानक माया मोह पसारा आगै साथ न जाई हों पूछो अपना सतगुर दाता किन विद दुत तरिया राम सतगुर पाए चलो जीवत्या मरिया राम जीवत्या मरिया भोजल तरिया गुरमुख नाम समावै पूरा पुरख पाया बड़पागी सच नाम लिब लावै मत प्रगास पही वन मान्या राम नाम बढ़ियाई नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योते मिलाई सूही महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा भुज गई आसे हो मन तन सेवा सतगुर है मैं मिले प्रभ गुणता से तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबा से वड भागी हर पाया जन नानक नाम विगासे गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आभोचरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रमदाहा हों तुझ बाज हो खरियो डीणिया ज्यो जल बिन मीन मराहा वड़भागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा मन दह दिस चल चल परम्या मन मुख परम भुलाया नित आसा मन चित वै मन तृष्णा भुख लगाया अनता तंतर दब्या फिर बिख पालन गया जन नानक नाम सलाहे तू बिन नावै पच पच मोया गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया मेरा हृदय सुध बुध विसर गई मना सचिंत विसारिया मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन साधारिया वड़भागी प्रभ आए मिल जन नानक खिन खिन वारिया सूही छंत महला चौथा मारे हिस वे जन हो मैं बिख्या जिन हर प्रभ मिल न दितिया देह कंचन वे वनिया इन होमे मार विगुतिया मोह माया वे सब काल खा इन मनमुख मूड़ सजुतिया जन नानक गुरमुख उभरे गुर सबदी होमे छुट्टिया वसे आने होवे जन इस मन को मन बासे ज्यो नित भोंदया दुख रहन वे वे हानिया नित आसा आस करे दया गुर पाया वे संत जनो मन आस पुरी हर चोदया जन नानक प्रभ देहो मती छड आसा नित सुख सो दया सा धन आसा चित करे राम राजया प्रभ से जिड़िया आई मेरा ठाकुर अगम दयाल है राम राजया कर कृपा ले हो मिलाई मेरा मंत्र लोचा गुरमुखे राम राजया हर सरदा सेज बिछाई जन नानक है प्रपाणिया राम राजया मिलिया सह सुपाई एक तसे जह प्रभु राम राजया गुर दसे हर मेले मैं मन तन प्रेम बैराग है राम राजया गुर मेले कृपा करे हों गुर विठों कोल कमाया राम राजया जियो सतगुर आगे दे गुर तुठा जियो राम राजया जन नानक हर मेले राग सूही छंत महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन बावरे तू काय देख पुलाना सुन बावरे नेह कूड़ा लायो कुसम बरगाना कूड़ी देख भुलो अड़ लह न मुलो गोविंद नाम मजीठा थी वह लाला गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोहे मगन थी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन कृपा निध राख लाज भगताना सुन बावरे देव ठाकर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निचल हब वैसी सुन पर देसी संत संग मिल रही है हर पाई है पागी सुन पै रागी चरण प्रभु कह रही है एहो मन दीजा संकना कीजा गुरमुखता च बहुमाना नानक दीन भगत पवतारण तेरे क्या गुण आख वखाणा सुने बावरे क्या कीजा कूड़ा मानो सुने बावरे हब वैसी गर्व घुमानो निचल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु होय दासा जीवत मरिया पहुंचल उतरिया जे थी वह कर्म लिखे आसा गुरु से बीज अमृत पीज जिस लाभ है सहज ध्यानो नानक शरण पया हर द्वार है हों बल बल सत गुरबानो सुने बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुने बावरे थियो रेण जिनी प्रभ ते आया जिन प्रभ ते आया तिन सुख पाया वड़बागी दर सुन पाइया थियो निमाना सत गुरबाना सगला आप मिटाइया ओह तन भाग सुधा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप वेचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख राख ला जपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसकै बलराम जियो हर अमृत भरे पंडार सब किश है कार तिसकै बलराम जियो बाबल मेरा वड समर्था करण कारु प्रभ हारा जिस सिमरत दुख कोई ना लागै पौजल पारे उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदर मन तन पीवा हरे आपे ले मिलाए क्यों वे छोड़ा थी वे ही बलराम जियो ते जिसनो तेरी टेक सदा जिसनो तेरी टेक सो सदा सद जी वे ही बलराम जियो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सृजन हारा जिसते खाली कोई ना ही ऐसा प्रभु हमारा संजना मिल मंगल गाया दिन रहने हस तुम्हारी सफल दर्स पेटिया गुर पूरा नानक सद बलिहारी समलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अभिनासी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गहे कंठ लाए मिले अंतर जामिया सत संतोख वजे वाजे अनहदा चुण कारे सुन पै बिनासे सगल नानक प्रभ पुरख करण हारे उपजया तत् ग्यान सहुरै पैया एक हर बलराम जियो ब्रह्म ब्रह्म में मिलिया कोई ना साकै भिन कर बलराम जियो बिस्म पेख बिस्म सुनिया बिस्माधु नदरी आया जल थल महियल पूर्ण स्वामी कट कट रहया समाया जिस ते उपजया तिस माहे समाया कीमत कह न जाए जिसके चल न जाहि लखणे नानक तिसे त्याए राग सूही छंत महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लागे हरंगे अंदर जागे हरंग जागे पाप पागे मिले संत प्यारिया गुचन लागे परम पागे काज सगल सवारिया सुन सरवण बाणी सहज जानी हर नाम जप वट भागै बिनवंत नानक सरन स्वामी जीव पिंड प्रभ आगै अनह शब्द सुहावा सच मंगल जस गावा गुण गाय हर दुख नासे रहस उपजै मन कणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख पणा नाम प्रभ का मुख पणा हुए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभावा बिनवंत नानक दया तार हो सदा हर गुण गावा गुरमीन स्वागत तरिया हर चरण जपत निस्तरिया हर चरण ध्याय सब फल पाए मिटे अपन जाना पाए भगत सब पाए हर जपे पढ़े पर भावा जब एक अलाकार पूर्ण दिस बिना नहीं कोई बिन वंत नानक गुरु परम खोया जत देखा तत सोई पतित पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुरु संत पाया प्रभ त्याया सगल इच्छा पुनिया धोमो ताप दिन से सर से परम पहले जरी वे छुनिया मन सहा ताई वजी वधाई मन हो कदे ना वीस रह बिन मंत नानक संत गुरु दिन डाया सदा पाज जग दीस रह राग सूही छंत महला पंजवा कर तीजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद तू ठाकुरो बैरा गुरु मैं जेही खंडेरी राम तू सागरो रतना गुरु हाँ साना जाना तेरी राम साना जाना तू वड दाना कर मेहर मत साई कृपा की जा समत दी जा पह तू त्याई घटना की जा रेण होगी जय ताकत जी हरे तेरी सब ऊ प्रणान का ठाकुर मैं जेही खान तेरी राम तुम गौहर अत गहर गंभीरा तुम पिर हम भरिया राम तुम बड़े बड़े वड ऊंचे हो हाँ इतनी कलहरिया राम हाँ के चुना ही एको तू है आपे आप सुजाना अमृत दृष्ट निमकम जीवा सर्व रंग रसमाना तरुण हे सनी दास हे दासी मन मोला तन हरिया नानक ठाकर सब समाना आपन पावन करिया तुझ ऊपर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम सुरत मत चतराई तेरी जो तू जाना हे जाना राम सोई जाना सोई पछाणा जाको नंदर सिंधे मन मुख भूली बहुती राही फाती माया फंदे ठाकुर पाणी साहब गुणवंती तिन ही सब रंग माणा नानक की तर तू है ठाकर तू नानक का माणा हों वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा उला राम हों बल जाई लख लख लख भरिया जिन परम परदा खुला राम मिटे अंधारे तजे बेकारे ठाकर सिव मनमाना प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परमाना पई अमोली पारा तोली मुक्त जुग दर खुला कोह नान कहो निरपो होई सो परम मेरा उला सूही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिन अब न जाना राम मात पिता पाई सतबंत पे जी प्राण मन पाना राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा भर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहया भर पूरे ताकि सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा सदा सदा प्रभ को बलिहारा नानक सद कुरबाणा ऐसा गुर बड़भागी पाई है जित मिले है प्रभ जा पै राम जन्म जन्म के किल वेख उतरे हर संत धूड़ी नित ना पै राम हर धूड़ी नाइए प्रभु तिहाइए बौहड़े जोन ना आइए गुरचनी लागे परमपो पागे मन चिंदिया फल पाइए हर गुण नित गाय नाम त्याय फेरे सो गुण ना ही संताप है नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस प्रताप है हर हरे हर गुण निधे हर संतन कै बस आए राम संत चरण गुर सेवा लागे तिनी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूर्ण कृपा धारी सफल जन्म हुआ पहो पाग्या हर पेटिया एक मुरारी जिसका साथ इन्हीं मिल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिया मेरे सतगुर सुख पाया गा मंगलो नित हर जन अपन जन हो पुनी इच सबाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरण आया वह जाई राम अबनासी पाया नाम ते आया सगम नोर्थ पाए सौंत सहज आनंद कनेरे गुचनी मन लाए पूर रहया कट कट अबनासी थान थन अंतर साई कोहो नानक कारज सगले पूरे गुरचनी मन लाई सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी ने जो दे कह दर्श तेरा राम लाख जेवा देहो मेरे प्यारे मुख हर आराधे मेरा राम हर आराधे जम पंथ साधे दुख न व्यापै कोई जत थल महियल पूर्ण स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह पेका नाठे प्रभ नेर हूँ ते नेरा नानक कौ प्रभ कृपा की जय नेत्र देख हे दर्श तेरा कोट करन दी जय प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल होवे कटिया काल की फासी राम कटिया जम फासी सिमरे अबनासी सगल मंगल सो ज्ञाना हर है जप जपिया दिन राती लागे सहज ध्याना काल मन दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अबनासी करोड़ हस तेरी टहल कमावे चरण चलहे प्रभ मार्ग राम पव सागर नाव सो हर सेवा जो चढ़ै तिस तार गराम पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगम नोर्थ पूरे महा बेकार गए सुख उपजे बाजे अनहत तूरे मन बांछत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कोह नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चलै तेरे मार्ग एहो वर एह वड़ियाई एहो तन होए वड़पागा राम एहो रंग एहो रस भोगा चरनी मन लागा राम मन लागा चरने प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਪੀਤਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਸੰਗਮ ਮਨੁ ਜਾਗਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਜੱਪੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ ਸੰਤ ਪਤ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਗਲੇ ਪਾਪ ਤਜਾਵੇ ਰਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤਿ ਮੀਠੀ ਕਥੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਭਲਾ ਸੰਜੋਗ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚਾ ਅਬਚਲ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਦਿਆਲਾ ਸਰਵ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ ਆਨੰਦਾ ਵਜੇ ਨਿਤ ਵਾਜੇ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮਨ ਬੂਠਾ ਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖੇ ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਿਨਸੇ ਭਰਮ ਪੈ ਝੂਠਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਖਾਣੀ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੰਤਨ ਹਰਿਆ ਸਰਵ ਸੁਖਾ ਤਿਸ ਹੀ ਬਣ ਆਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੇ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰਮ ਹੈ ਨਵ ਨਿਧ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਕਦੇ ਨ ਵਿਸਰੈ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗਾ ਛਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਛਤਰਪਤ ਕਿੰਨੀ ਤਬ ਸਗਲੀ ਤਪਤ ਬਿਨਾਸੀ ਰਾਮ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਠਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੀ ਰਾਮ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਫੁਰਮਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਬਲਾਇਆ ਸਾਚ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਫੱਲਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਸੋਭਤ ਬੈਸਤ ਖੱਲਿਆ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਵਾਮੀ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲਸੋਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੰਨਿਆ ਬਨ ਤਾਲ ਬੰਨਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪਰਸੇ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੋਹਿਆ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਸੇ ਗੁਣ ਮੰਗਲ ਹਰ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਏ ਸਾਚਾ ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪਾਈਆ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਨ ਬੁਝਿਆ ਵਧਾਈਆ ਕਰੀ ਨਦਰ ਸਵਾਮੀ ਸੁਖੇ ਗਾਮੀ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਧਾਰਿਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੈ ਸਾਗਰੋ ਪੈ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਰਾਮ ਬੋਹਿਤ ਰਹ ਚਨ ਅਰਾਧੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਲਗਾਏ ਰਾਮ ਗੁਰਸਬਦੀ ਤਰੀਐ ਬੋਹੜੇ ਨਾ ਮਰੀਐ ਚੂਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਤਾਂ ਮਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣਾ ਦੁਖ ਨਾ ਭੂਖ ਨਾ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਣੀ ਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਰੰਗਰਾਤਾ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਏ ਸੰਤਨਾ ਹਰ ਮੰਤੁਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹਰ ਸਾਜਨ ਵਸਗਤ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਧਰਿਆ ਸਭ ਠਾਕਰ ਦੀ ਨੇਰਾ ਕਪਨੀ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਮਿੱਟੀ ਉਦਾਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਥਿਤ ਪਾਈ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਵਿਛੜ ਕਬਹੂ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਵੜ ਭਾਗਣ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਚੀਨੇ ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਰਭੇ ਰੰਗਰੇ ਰਾਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਭੈ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ ਸਦਾ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਆਪਣੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਿਗਾਰੀ ਸੋ ਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰੇ ਰਾਮ ਸਹਿ ਸੁਪਾਏ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਲੀਏ ਜਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਧਾਰਿਆ ਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਗਲ ਵਿਆਪੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪੈ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਹੋ ਨਿਤ ਸਕੀ ਹੋ ਸਗੋ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ਰਾਮ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਧਿਆਏ ਰਾਮ ਜਪ ਏਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੇਕ ਰਵਿਆ ਸਰਮੰਡਲ ਛਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰਿਆ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰੇ ਪੂਰਨ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਪੇਖ ਦਰਸੁਨ ਨਾਨਕ ਬਿਕਸੇ ਆਪ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਬਜਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਦ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਮਨ ਇੱਛੇ ਸਹੀ ਫਲ ਪਾਏ ਕਰਤਾ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਸਰਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਬੁੱਧ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਬਿਗਾਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰ ਜੋ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਪ੍ਰਭੇ ਆਪ ਸਵਾਮੀ ਆਪੇ ਰੱਖਾ ਆਪ ਪਿਤਾ ਆਪੇ ਮਾਇਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਇਹੋ ਥਾਨੂੰ ਸੁਹਾਇਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਹਟਨਾਲੇ ਸੋਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ ਕਟੀਆ ਜਮਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਗੋ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਏ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਸੁਖ ਮਨ ਹਿਰਲਿਆ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਨਾਸੀ ਸਬਦ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲ ਜਾਸੀ ਦਾਤ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ਰਾਮ ਪਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਆਲਾ ਜੀਏ ਜਨ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਾ ਦਹਿ ਦਸ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਜਸ ਸੁਆਮੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨੇ ਅਬਚਲ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਚੋਜ ਭਗਤ ਪਵ ਪੰਜਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨੀਐ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਚੁਣਕਾਰੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਤ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਤ ਹੋਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ ਮਹਿਲ ਸਭ ਕਾਠੇ ਕਿਲਵਿਕ ਸਗਲੇ ਖੋਵੈ ਤਹਿ ਜਨਣਾ ਮਰਣਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਬੋਹਣਾ ਪਾਈਆ ਜੋਨੀਐ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ਼ ਪੁੰਨੀਐ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜੇ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੁੰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸਗਮ ਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਭਇਆ ਜਗਲ ਅੰਤਰ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵੇ ਸੂਰੇ पूर्ण पुरख अचुत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रख्या परमेश्वर, नानक नाम ते आया नव निध सिद्ध रिद दीने, करते तोट ना आवै काई राम, खात खर्चत बिलशत सुख पाया, करते की दात सवाही राम, दात सवाई ने खुट ना जाई, अंतर जमी पाया, कोट बिघन सगले उठे नाठे, दुख न नेड़ै आया, सांत सहज आनंद कनेरे, बिनसी भूख सबाई, नानक गुण गावे स्वामी के, अचरज जिस वड़ियाई राम, जिसका कार्य तिन्ही किया, मानस क्या वेचारा राम, भक्त सोहन हर के गुण गावे, सदा करे जयकारा राम, गुण गाय गोविंद अनंत उपजे, साध संगत संग बनी, जिने उद्यम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी, अठ सठ तीर्थ पुन क्रिया, महा निर्मल चारा, पतत पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द अधारा, गुण निदा मेरा प्रभ करता, उस्तत कौन करी जय राम, संता की बेनती स्वामी, नाम महारस दी जय राम, नाम दीजै दान की जय, बिसर नाही एक खिनो, गुण गोपाल रुचर रसना, सदा गाइय अंधनो, जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तन अमृत पी जय, बिनवंत नानक इच पुनी पेख दर्शन जी जय, राग सूही महला पंजवा छंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मिठ बोलरा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों सम्मल थकी जी ओह कदे न बोलै कोरा, कोरा बोलना जानै पूर्ण भगवानै, औगण को न चितारे, पतित पावन हर बिद सदाए, एक तेल नहीं भन्नै काले, घट घट वासी सर्व निवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा, हों बिस्म पै जी हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी हो चरण कम पग छारा, पर पेवक्त जीवा ठंडी थीवा, तिस जेवड़े अवर न कोई, आदे अंत मद प्रभ रव्या, जल थल मही अल सोई, चरण कमन जप सागर तरया, पवजल उतरे पारा, नानक सरन पूर्ण परमेश्वर, तेरा अंत न पारा वारा, हो निमक न छोड़ा जी ह प्रीतम प्राण आधारो, गुर सतगुर कहया जी साचा अगम विचारो, मेरे साधु दीना ता नाम लीना, जन मरण दुख नाठे, सहज सुख आनंद कनेरे, हों मैं बिंठी गाठे, सब कै मद सब हूँ ते बाहर, राग दुख ते नियारो, नानक दास गोबिंद सरनाई ह प्रीतम मन्हे सधारो, मैं खोजत खोजत जी हने चलो सो कर पाया, सब अध्रव अध्रव डिठे जियो, ता चरण कम चितलाया, प्रभ अविनाशी हों तिसकी दासी, मरै न आवै जाए, धर्म अर्थ काम सब पूर्ण मचिंदी इच्छ पुजाए, सुरत सिमरत गुण गावे, करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया, नानक सरन कृपा निध स्वामी, वटभागी हर हर गाया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वार सूही की श्लोका नाल, महला तीजा श्लोक महला तीजा, सूहा वेस दोहा गणी, पर पे रावण जाए, फिर छोड़िया करे अपने मोही दूजा पाए, मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग, शुद्ध पतार है छोड़िया फिर लगा जाए विजोग, गुरमुख हो वैसो पलटिया हराती साज सिगार, सहज सच पिर रावे हरनामा उर तार, आज्ञाकारी सदा सुहागण आप मिल ही करतार, नानक पिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार, महला तीजा सुहुबीए ने माणिए सो सोह सदा संभाल, नानक जन्म सवारे अपना कुलपी छुट्टी नाल पौड़ी, आपे तख्त रचाए उन आकाश पताला, हुक्मे तरती साजी उन सच्ची धर्मशाला, आप उपाय खपायदा सच्चे दीन दयाला, सबना रिजक संभाहेदा तेरा हुक्म निराला, आपे आप वर्तदा आपे प्रतपाला, श्लोक महला तीजा सुहुपता सोहा गणी, जामन लह सटनाओ सतगुर अपना मनाए लै, रूप चढ़ीता अगला दूजा नाही थाओ, ऐसा सिगार बनाए तू मैला कदे न हो वही, एहन इस लागै पाओ, नानक सोहागण का क्या चिन्ह है, अंदर सच मुख उजला खसमै माह समाए, महला तीजा लोका वे हो सुहवी सुहा वेस रही करी, वेसी सोह ना पाईया कर कर वेस रही, नानक तिनी सोह पाया जिनी गुर की सिख सुनी, जो तिस भावै सो थिया इन बिद कंत मिली पौड़ी,
1: हुक्मी श्रेष्ठ साजियन बहु पित संसारा, तेरा हुक्म न जापी के तड़ा सच्चे अलख अपारा, एक ना नो तू मेल लहे गुर शब्द बीचारा, सच रते से निर्मले होमै तज वेकारा, जिस तू मिले सो तुद मिलै सोई सचियारा, सलोक महला तीजा सुहविये सुहा सब संसार है, जिन दुरमत दूजा पाओ खिन मह झूठ सब बिन सजाए, ज्यो टिकै न बिरख किछाओ गुरमुख लालो लाल है, जो रंग मजीठ सचड़ाओ उल्टी सेकत सकत ਉਲਟੀ ਸਖਤ ਸਿਵੈ ਕਰਿਆਈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਇਸ ਲਹਿਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੰਡ ਬੈਠੀ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ ਦੁੰਮਣੀ ਸੂਹੈ ਵੇਸ ਲੁਭਾਏ ਸਬਦ ਸੱਚੈ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰ ਭੈ ਭਾਏ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੇ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਆਪ ਪਾਇਨ ਆਪ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਤਿਸਦਾਂਤ ਨ ਜਾਪਈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਜਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਰਮਾਈ ਮਨ ਮੁਕਟੋਰ ਨਾ ਪਾਈ ਨੀ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਸਭ ਚੱਲੈ ਰਜਾਈ ਸਲੂਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੂਹੈ ਵੇਸ ਕਾਮਣ ਕੁਲੱਖਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਪਰ ਪੁਰਖ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਉਸ ਸੀਲ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੈ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਖੁਆਰ ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਪਧਾਰ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਸਭ ਉਤਾਰ ਧਰੇ ਗੱਲ ਪਹਿਰੈ ਖਿਮਾ ਸਿਗਾਰ ਪਈਐ ਸੋਹਰੈ ਬਹੁ ਸੁਭ

अंतर बाहर एको वे के बिचों परम चुकाए, बिन वजाए किंगरी बाजे जोगी सा किंगुरी बजाए। कहे नानक मुक्त होवे जोगी साचे रहे समाए। राम कली महला तीजा, भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई। संतो गुरमुख दे वडियाई, रहो सच रहो सदा सहज सुखी उपजे काम क्रोध विचों जाई। आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई, जिस ते उपजे तिस ते बिनसे अंते नाम सखाई। सदा हयोर दूर नैन देखो रचना जिन रचाई, सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे स्यों लिव लाई। सतसंगत में नाम निर्मोलक वड्डे पांग पाया जाई, परम न भूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई। बिन नाबे सब भूली फिरदी विरता जन्म गवाई, जोगी जुगत गवाई हंडे पखंड जोग न पाई। शिव नगरी में आसन वैसे गुर शब्दी जोग पाई, धातुर बाजी शब्द निवारे नाम बसे मन आई। एहो संजे शरीर सरवर है संतो इसनान करे लिवलाई, नाम इसनान करे से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई। त्रै गुण अचेत नाम चेते नाही बिन नावै बिन सजाई, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूरत त्रै गुण परम पुलाई। गुर प्रसादी त्रिकुटी छोटे चौथे पद लिवलाई, पंडित पढ़े बड़ बाद बखाणे तिन्ना बूझ न पाई। भिखिया माते परम पुलाए उपदेश कहे किस पाई, भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई। बाणी लागे सो गत पाए शब्दे सच समाई, काया नगरी शब्दे खोजे नाभ नभन निध पाई। मनसा मर मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई, लोइन देख रहे विसमादे चित अदिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई, हों गुर सलाही सदा अपना जिन साचे बूझ बुझाई। नानक एक कहे बेनंती ना वो गत पत पाई। राम कली महला तीजा, हर की पूजा दुर्लभ है संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई, रहाओ हर बिन सब कुछ मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई, पूजा करे सब लोक संतो मनमुख थाए न पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतो ए पूजा थाए पाई, पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिवलाई। बिन नावे होर पूज न होवे परम पुली लुकाई, गुरमुखी आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाई। आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई, पूजा करे पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई। गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई, पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई। अपना आप न पछाणे संतो कूड़ करे वडियाई, पखंड कीने जम नहीं छोड़े लै जासी पत गवाई। जिन्हें अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई, एहो मनुआ सुन समाद लगावे ज्योति ज्योत मिलाई। सुन सुन गुरमुख नाम बखाणे सतसंगत मिलाई, गुरमुख गावे आप गवावे दर साचे सोभा पाई। साची वाणी सच बखाणे सच नाम लिबलाई, पै पंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई। सब कुछ आपे आप वरते नानक नाम वडियाई। राम कली महला तीजा, हम कुचल कुची लत बिमानी मिल शब्दे मैल उतारी। संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम बसिया कट अंतर करते आप सवारी। रहो पारस परसे फिर पारस होवे, पारस परसे फिर पारस हो हर जियो अपनी कृपा तारी।
ਇੱਕ ਭੇਖ ਕਰੇ ਫਿਰੇ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਤਿੰਨ ਜੂਏ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਇੱਕ ਆਨੰਦਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰੀ, ਆਨ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ। ਪੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ ਕਭੀ, ਪੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਸਵਾਰੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆਨ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ। ਤਿਸਕਿਆ ਗੁਣਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਹੋਂ ਗਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਹਰ ਜੀਉ ਜਪੀ ਹਰ ਜੀਉ ਸਲਾਹੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅਖੁੱਟ ਸੱਚੇ ਭੰਡਾਰੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤੁੱਠ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਲ ਤਾਰੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸਦਾ ਭੁੱਖ ਲਾਗੀ, ਗਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਤਿਸਕਾ, ਆਖਣ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਸਹੀ ਜਨ ਨਿਸਤਰੇ, ਪੌਜਲ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰੀ। ਬਿਨ ਹਰ ਸਾਚੇ ਕੋ ਪਾਰ ਨ ਪਾਵੇ, ਬੂਝੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ। ਕਾਇਆ ਕਾਂਚਨ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤੀ, ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰੀ। ਕਾਇਆ ਅਮਰਤ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਪਾਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਖੋਜੇ ਸੋਈ ਪਾਵੇ, ਹੋਰ ਫੂਟ ਮੋਏ ਅੰਕਾਰੀ। ਬਾਦੀ ਵਿੰਸੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰੀ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੋਮੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਤਿਨੇ ਪਛਾਤਾ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੇ ਮਾਇਆ, ਲਾਗੇ ਡੋਬ ਮੋਏ ਅੰਕਾਰੀ। ਜਿਚਰ ਅੰਦਰ ਸਾਚ ਤਿਚਰ, ਸੇਵਾ ਕੀਚੇ ਜਾਏ ਮਿਲੀਏ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਹਾਰੀ। ਤਨ ਮਨ ਵਾਰੀ ਬਾਰ ਕੁਮਾਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਵਿੱਠੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏਗਾ, ਉਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਆਪ ਜਗਾਏ ਸਹੀ ਜਾਗੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਮੂਏ ਜੇ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ, ਭਗਤ ਜੀਵੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਹੀ। ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਗਤ ਪਾਹੀ, ਏਕ ਨਾਮ ਬਸਿਆ ਕਟ ਅੰਤਰ, ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਰਹਾਓ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ, ਦੇਂਦਾ ਰਿਜਕ ਸਵਾਈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਵਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਏ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਈ। ਤਿਸੇ ਸਰੇਵੋ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪ ਹੋ ਪਾਏ, ਅਲੱਖ ਨ ਲੱਖਣਾ ਜਾਈ। ਆਪੇ ਮਾਰ ਜਵਾਲੇ ਆਪੇ, ਤਿਸਨੋ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਕੀਤੇ, ਆਪੇ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਸੇ ਬੜ ਪਾਗੇ ਜਿਨੀ ਏਕੋ ਜਾਤਾ, ਸੱਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਆਪ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣਾ ਆਪੇ, ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਪੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਏ ਅੰਤਰ, ਆਪੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਨਿਗੁਰੇ ਅੰਧ ਫਿਰੇ ਲੁਕਾਈ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਤਿਨੀ ਸਾਧ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਵੋ ਆਪ ਭੁਲਾਈ, ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਲਾਇਓ ਸੰਤ, ਤਿਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਵਡਿਆਈ। ਤਿਸ ਬਿਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਕਰਤ ਪਾਵਸ ਵਣਤ ਬਣਾਈ। ਨਿਆਉ ਤਿਸੇ ਕਾ ਹੈ ਸਦ ਸਾਚਾ, ਬਿਰਲੇ ਹੁਕਮ ਮਨਾਈ। ਤਿਸਨੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਤਿਆਵੋ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਤ ਬਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੋ ਜਨ ਸੀਜੇ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਈ। ਸੱਚਾ ਆਪ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ। ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਵਿਆ ਸਰ ਬਠਾਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਨ, ਕਿਨੇ ਕੀਆ ਪਰਵਿਰਤ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਨੇ ਕੀਆ ਪੂਜਾ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਕਿਨਹੀ ਨੇਵਲ ਪੋਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਮੋਏ ਦੀਨ ਹਰ ਹਰ ਅਰਾਧੇ। ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ, ਆਨ ਨ ਜਾਣਾ ਬੇਸਾ ਰਹਾਓ। ਕਿਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਵਣ ਖੰਡ ਪਾਇਆ, ਕਿਨੀ ਮੌਨ ਅਧੂਤ ਸਦਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਤੋ ਨਿੰਨ ਭਗਾਤੀ, ਮੋਏ ਦੀਨ ਹਰ ਹਰ ਓਟ ਲੀਤੀ। ਕਿਨੀ ਕਹਿਆ ਹੋਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਤਜ ਪਹਿਆ ਉਦਾਸੀ। ਕਿਨੀ ਪਵਨ ਸਭ ਧਰਤੀ ਕਰਿਆ, ਮੋਏ ਦੀਨ ਹਰ ਹਰ ਦਰ ਭਰਿਆ। ਕਿਨੀ ਕਹਿਆ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਨੀ ਕਹਿਆ ਵਾਹ ਬਹੁ ਪਾਈ।
कोई कहे मैं तने पसारा मोए दीन हर हर अधारा किनी कूकर नृत कराई किनु वर्त नेम माला पाई किनी तिलक गोपी चंदन लाया मोए दीन हर हर हर त्याया किनी सिद्ध बो चेटक लाए किनी पेक बो थाट बनाए किनी मंत तंत मंत बो खेवा मोए दीन हर हर हर सेवा कोई चतर कहावे पंडित को खट कर्म सहत स्यों मंडित कोई करे अचार सो करणी मोए दीन हर हर हर सरणी सगले कर्म धर्म जुग सोदे बिन ना वे हो मन ना प्रबोधे कौन नानक जो साध संग पाया बूझी तृष्णा महा सीत लाया राम कली महला पंजमा इस पाणी ते जिन तू करया माटी काले देहरा करया उक्त जोत ले सुरत प्रीख्या मात गर्भ में जिन तू राख्या राखण हार संहार जना सगले छोड़ विचार मना रहो जिन दिए तुद बाप महतारी जिन दिए प्रात सुतहारी जिन दिए तुद वन तार मीता तिस ठाकर को रख ले हो चीता जिन दिया तुद पवना मोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला जिन दिया तुद पावक वलना तिस ठाकर की रहो मन सरना छत्ती अमृत जिन पूजन दिए अंतर थान ठहरावण को किए बस दादियो वर्तन वलना तिस ठाकर के चित रख चरना पेखण को नेत्र सुनन को करण हस्त कमावन वासन रसना चरण चलन को सिर कीनो मेरा मन तिस ठाकर के पूजो पैरा अपवृत पवित्र कर जिन तू करया सगल जोन में तू सिर तरिया अब तू सीज पावे नहीं सीजे कार्ज सबरे मन प्रभ त्याई जाए इहां उहां एके ओही जत कत देखिए तत तत तो ही तिस सेवत मन आलस करे जिस विसरिए निमख ना सरे हम अपराधी निर्गुण यारे ना कुछ सेवा ना कर मारे गुर वोहित बड़ पागी मिलया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली महला पंजमा काहू बिहावे रंग रस रूप काहू बिहावे माए बाप पूत काहू बिहावे राज मिलख बपारा संत बिहावे हर नाम धारा रचना एक बनी सबका एक तनी रहो काहू बिहावे बेद अरवाद काहू बिहावे रसना साध काहू बिहावे लपट संग नारी संत रचे केवल नाम मुरारी काहू बिहावे खेलत जुआ काहू बिहावे अमली हुआ काहू बिहावे पर दर्ब चोराए हर जन बिहावे नाम त्याए काहू बिहावे जोग तप पूजा काहू रोग सोग परमीजा काहू पवन तार जात बिहाए संत बिहावे कीर्तन गाए काहू बिहावे दिन रहन चालत काहू बिहावे सो पिड़ मालत काहू बिहावे बाल पढ़ावत संत बिहावे हर जस गावत काहू बिहावे नट नाटक निरते काहू बिहावे जियाए हिरते काहू बिहावे राज में डरते संत बिहावे हर जस करते काहू बिहावे मता मसूरत काहू बिहावे सेवा जरूरत काहू बिहावे सोदत जीवत काहू बिहावे हर जस पीवत जित को लाया तित ही लगाना ना को मूड नाही को स्याना कर कृपा जिस देवे नाओ नानक ताके वल वल जाओ राम कली महला पंजवा दावा अगन रहे हर बूट मात गर्भ संकट ते छूट जा का नाम सिमरत पौ जाए तैसे संत जना राखे हर राए ऐसे राखण हार नियाल जत कत देखो तुम प्रित पाल रहो जल पीबत ज्यों तिखा मिटंत धन विकसे ग्रह आवत कंत लोभी का तन प्राण अधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार करसाणी ज्यों राखे रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखे कंठ लाए ज्यों अंदले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावे बौशांद पिंगल पर्वत परते पार हर के नाम सगली उधार ज्यों पावक संग सीत को नास
ऐसे प्राशत संत संग विनाश, ज्यों साबण का पर उजल होत, नाम जपत सब परम पौख होत, ज्यों चक भी सूरज की आस, ज्यों चात्रिक बूंद की प्यास, ज्यों करंक नाद कर्ण समाने, त्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा ते लागे प्रीत, दयाल पै ताए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैण लोए, तिस बिन दूजा वरण कोए, परम पै छोटे गुर प्रसाद, नानक पेख्यो सब समाद, राम कली महला पंजमा, जी जंत सब पेखिए प्रभ सगल तुम्हारी तारणा, यो मन हर के नाम उदाहरणा रहो, खिन मैं थापो थापे कुदरत सब करते के कारण, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग विदारणा, नाम जपत मन निर्मल होवे सोखे सोख गुदारणा, भगत सरन जो आवे प्राणी तिस इहां उहां न हारणा, सुख दुख गई समान की विरता तुम ही आगे सारणा, तू दाता सबना जिया का आपन किया पालना, अनक वार कोट जानी ऊपर नानक वंजे वारणा, राम कली महला पंजमा अष्टपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दर्शन पेटत पाप सब नासे, हर स्यों दे मिलाई, मेरा गुर परमेसर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम दड़ाई, अंते होए सखाई रहो, सखल दुख का डेरा पन्ना संत तोर मुखलाई, पत तुपनीत किए खिन पीत रगन देर बंजाई, कर्ण कर्ण सम्रथ स्वामी नानक ते सरणाई, बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाई, एक शब्द ले बलाई, अंधकूप बिख्या ते काढ़ियो साच शब्द बण आई, जन्म मरण का सहसा चूका बहुड़ कतू न ताई, नाम रसायणी हो मन राता अमृत पी तृपताई, संत संग मिल कीर्तन गाया नेचल वस्या जाई, पूरे गुर पूरी मत दीनी हर विनयान न पाई, नाम निदान पाया वड़ पागी नानक नरक न जाई, काल स्याण पुकत न मेरी पूरे गुरु कमाई, जप तप संजम सुच है सोई आपे करे कराई, पुत्र कलत्र महा बिख्या में गुर साचे लाए तराई, अपने जीते आप संभाले आप लिए लड़ लाई, साच धर्म का बेड़ा बांध्या पवजल पार पवाई, बेस मार व्यंत स्वामी नानक वल वल जाई, अकाल मूरत झुनी संभो कल अंधकार दीपाई, अंतर जामी जियन का दाता देखत तृप्त गाई, एक अंकार निरंजन निरपो सब जल तल रह समाई, भगत दान भगतां को दीना हर नानक जांचे माई, राम कली महला पंजमा श्लोक। सिखो शब्द प्यारियो जन्म मरण की टेक, मुखी उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बण आई, संत सतगुर पेख निभाई संत, हर नाम लहा दास को दिया सगली तृष्णो लाही संतो रहो, खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कह न जाई संतो, चरण कमल स्यो लागो त्याना साचे दर्श समाए संतो, गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत तृप्त गाई संतो, आत्म राम रव्या सभी अंतर कत आवे कत जाई संतो, आदि जुगादि हैप्पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो, आप बयान तंत नी पाइए पूर रया सब ठाई संतो, मीत साजन माल जोवन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो, राम कली महला पंजमा। मन वच कर्म राम नाम चितारी, घूमण केर महात विखड़ी गुरमुख नानक पारी उतारी रहो, अंतर सुखा बाहर सुख हर जप मलन पहे दुष्टारी, जिसते लागे तिने नवारे प्रभ जियो अपनी कृपा तारी, उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महंकारी, साधु संग तेहो फल पायक केवल नाम आधारी, ना कोई सूर न कोई हीणा सब प्रगटी ज्योत तुम्हारी,
तुम समर्थ अकथ गोचर रवि आए कुमरारी, कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी। नाम दान नानक वड़ई तेरे संता जना रहनारी, राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ते पाया सह सेती मन वजियां बधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गा बने आईया, शब्द ते गावो हरि केरा मन जनी बसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण। अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारण, सब नंगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब किच है जिस दे सो पावै। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै, नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे, साचा नाम मेरा धरो साचा।